गुरु की जुगत गुरु के पुत्र हो गए। ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करते ने, जेड़ा आके उन्हें सत्संगियां च रल गया, गुरु पुत्रां च रल गया, प्यार दे रंग च रस्ता होया, प्रभु जस कर रहा है, प्रभु जस मान रहा है। और ये धर्म का मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण किया, आप बनाया। इस मार्ग ते जेड़े चलते ने धर्म पंथ तरयो धरनी तर आप, जेड़े इस मार्ग ते चलते ने रहे लिव तार ना कहावत है, भटकना मुक जाती है, लिव जुड़ जाती है, जीवन का आनंद लेंदे ने। भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने, कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने लोग, मथुरा पन भाग भले उनके, मन इच्छत ही फल पावत है। उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नूं प्राप्त करना और ये फल प्राप्त कर दे। कहंदे ने उन्हां नूं फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा, रब के सुत को तिन त्रास कहां। जो चरण गुरु चित लावत है, जेड़े गुरु चरणां नाल मन जोड़ लैंदे ने, उन्हां नूं नरक दा डर नहीं, जम दा डर नहीं, ते ना ही किसे सुरग दी इच्छा रह जांदी। गुरु चरणां दे प्यार च गुणूंद होए आनंद लैंदे ने, रंग च रते होए

अजय सरोवे पीख्या खाए ऐसी दरगे मिले सजाए रोवे रामन काला पया सीता लखमन विछड़ गया रोवे दसर लंक गवाए जिन सीता आंधी डारू आए रोवे पांडव पए मंजूर जिनके स्वामी रहते हजूर रोवे जन्मे जाख गया एक ही कारण पापी पया रोवे शेख मसा एक पीर अंतकाल मत

संत बाबा अतर सिंह महापुरुष मस्तु आने वाले कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे। महापुरखा ने आख्या अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई। किरत दी रोटी कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने हैं। मजदूरां वाले कपड़े पा ले, एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा है। भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन, कहन लगा जी असीं मजदूरी करना चाहते हां, करो। अठ घंटे कम करना पएगा, ठीक है करांगे। मजदूरी तय हो गई, जितना कम अठां घंटियां विच करना सी चौं घंटियां विच कर दिता। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम। ठेकेदार ने बुला के आख्या ऐ फड़ो पैसे ते जाओ। कहन लगे नहीं, वायदा अठ घंटे दा। फिर दुगनी मजूरी देन लगा, कहन लगे नहीं जो बचन होया है ओ ही लवांगे। कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हैं, ऐसे बंदे ता मिले नहीं। खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा, आटा घ्यो दाल ते फिर हत्थी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया, छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए, कहन लगे अज ते लंगर छकण दा आनंद आ गया, कल आपां भी चलांगे भाई। बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले। अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे, अज भी भाई काम मिलेगा। ते ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहे है कि ए मजदूर नहीं हन, ए कोई फरिश्ते नहीं, ए कोई होर लोक दे बंदे आए हैं। ते जदों वेखद्या वेखद्या बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरना ते डिग पिया, कहन लगा तू मजदूर नहीं है। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राख्या, रतन न छपे छपाया। गुरु की साथ संगत, कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है, ते आज तुसी आए हो मैनू माफी दे दियो। मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको। कुछ सिख लंघ रहे सन, उन्होंने वेख्या होए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने, झट चरना ते मथा टेकया। गुरु की साध संगत कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां एहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ, सानू चंगे राह लाओ, ते आप इस भेस विच खड़े हो। ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ।

ते कृपा कर मैनू अपना ते मैनू मान बख्श, क्योंकि तेरे सिवा इस संसार ते मेरा होर कोई नहीं। ये अरदास है गुरसिख दी अपने परमेश्वर दे चरना कमला।

संसार ते कोई प्राणी एक दूसरे दा कोई एक काज सवार सकदा है, कोई दो कोई तीन कोई दस कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां

हर भलूक सियाने, तू बेअंत को विरला जाने, को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द। रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा, तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा। नाना रूप तरे बहुरंगी सब तेरे न्यारे, तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत।

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अयारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरी भौ रंगी सब तेरे निया तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महाशिव जो करी तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा

कैसा पुल है भाई साहब? कहने ने एक बारी नहीं पांच बारी गंगा चला जा, पांच पांच बारी प्रयागराज रा के त्रिवेणी दे इशनान करे, एक सिख नु इशनान करा देवे, एक सिख नु नहाउण वास्ते इशनान वास्ते पानी भर के दे देवे, ओदे इशनान दा प्रबंध कर देवे, इन्ना पुन है। कहंदे ने सिख नु प्यार नाल पानी पियाता, वैसे तां सब नु ही पिउणा चाहीदा, पर गुरु के सिख नु गुरु शब्द दी विचार वाले नु गुरु प्यार वाले नु आदर सत्कार नाल पानी पिया दिता। समझ लो कुरुखेत्र दी यात्रा होवे, कुरुखेत्र वर्गे महान तीर्थ दी यात्रा होवे, जे किते सिख नु प्रसादा छका दिता प्यार नाल भाव करके, लंगर छका दिता है ते समेत जग कर लिया, थोड़ा नहीं बहुत वड्डा पुन हो गया। ते भाई साहब कहंदे ने एक होर वड्डा पुन भी है, एदों भी वड्डा पुन है, जैसे सत मंदिर कंचन के उसार दी ने, कोई सोने का मकान एक अद्धा बना सकता है, मिट्टी का ही बनाने मसा मसा बन, एक नहीं सत सत मकान सोने दे कोई बना के दान कर दे, जे किते सिख नू शब्द सिखा दे, शब्द सुना दे, शब्द दे लड़ ला दे, उदों वड्डा पुन। सत सत सोने दे मकान बना के दान करन नालों एक सिख नू शब्द सिखा दे, गुरु के शब्द दे लड़ ला दे। एक होर गल कहिंदे ने साधां दे दर्शन करन वास्ते, महात्मावां दे दर्शन करन वास्ते, पुन आत्मा दे दर्शन करन वास्ते लोग तीर्थां ते भटकदे ने, पर भी वारी किसे साधु दर्शन करन जाना एक पासे ते किसे गुरसिख नू मुठियां भर के सुआ देना एक पासे। इस छोटे जतन नाल वड्डा फल, बहुत वड्डा महात्म है, गुरु के सिख दी खुशी गुरु की खुशी है। और एक बार ऐसा होया सी, भाई सत्ता बलवंड कीर्तन करके हटे सन, उठे ते अगों बाबा बुढ़ा जी मिल गया, कहन लगे भाई सत्ता अज मैं पछड़ गया, एक शब्द मैनू भी सुना दे। कहन लगे बाबा इस तरह थोड़ा कीर्तन सुनाया जाता, उत्थे आके सुनिया कर। बाबा निराश होके जा बैठा, संगत गुरु के बचन सुन लै, साहब गुरु अमरदास सब सच्चे पातशाह दे बचन सुन लै। शाम होई कीर्तन करन आउण बैठे, महाराज दूजे पासे मुंह करके बैठ गए, परेशान होए, हाथ बन्ने, महाराज कहन लगे नहीं तुहाडा कीर्तन सुनना, तुसी मेरे सिख नू शब्द नहीं सुनाया, मेरे की लगदे, मेरे सिख दी खुशी नहीं लई, मेरे की लगदे। महाराज सच्चा पातशाह सिख दी खुशी विच आप

जगत गुरु बाबा धन धन साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत दे कल्याण करता मनुखता दे हामी दुखियां ते गरीबां नूं हिकड़ी नाल लाउण वाले संसार दी कल्याण करन वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सोरठ महला पहला विच कृपा करदे ने। तू प्रभु दाता दान मत पूरा हम थारे पे खारी जियो मैं क्या मांगू किच थिर ना रहाई। तू दाता है तेरे कोल सारियां दाता ने तू दाता दा मुजस्मा है पर सोचना ता मैं है भाई मैं मंगा की। हे मालिक मैनू ओ दात दे जड़ी सदा थिर रहे। करता तू मेरा जजुमान एक दखना हों तै पै मांगू देवो अपना नाम मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया है जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र

ब्रह्मा दियां पत्तियां विच वसदा है। ब्रह्म पापी बिस्न डारी विष्णु भगवान डालियां च वसदा है। फूल शंकर दे ओ भोलेनाथ शंकर फूलां विच वसदा है।

संग उजियारा जहां पंथ तेरा कौन सिंजानू हर का नाम ते नाल पछानू जय

गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, ये तेरे सिदक का फल है जिहड़ा अज मैनू नवा जीवन मिले। रजनी, रजनी।

0: मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकते रजनी, मेरा रोग तो तगे रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
2: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने, कितने ने मेरे पति?
2: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी दे दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबील वाले बाबा जी तो पानी पिया, मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग कि ठीक होया?
2: यह सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे, तो मैं रिड़दा रिड़दा ऐ छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी टाणी फड़ के पानी कैसे ना?
2: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
2: ऐस नाल।
1: अच्छा, ता फिर तुसी ऐस हाथ में भी पानी पाओ, मैं अपनी अखा नाल इस जलदा चमत्कार देखांगी।
2: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार स्वीकार सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

आप अपनी बाणी विच लिखते हैं कि साच कहो सुन ले हो सब दुनिया दे लोगो एक वास्ते नहीं ये उपदेश सारे संसार नूं ये सांझा और भाईचारे का उपदेश है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कहते हैं साच कहो सुन ले लो सब है सारे सुन लो साच कहो सुन लो।

दुर्योधन की सभा के विचकार अपनी लज्जा बचाउन वास्ते प्रभु नूं याद कीता, एक मन एक चित होके त्याया उसनूं। ता फिर जो परमेश्वर का नाम जपदे हन उन्हां दी लज्जा वाहिगुरु आप रखदा है। साथ संगत बोलो श्री। तीसरे प्रमाण विच भाई साहब कहते हैं, वो गरीब ब्राह्मण सुदामा जो मित्र सी भगवान श्री कृष्ण जी का, जो थोड़े जिहे चावल लैके द्वारकापुरी पहुंचया तो उसके बदले भगवान श्री कृष्ण जी ने उस भेटा दे और सुदामे दे प्यार दे सदके उसनू दुनिया का बेअंत धन बख्श दिता। सुदामे नू नौ नीतियां 18 सिद्धियां दे दित्तियां। चौथे प्रमाण विच भाई गुरदास जी कहते हैं,

जगत गुरु बाबा धन धन साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत दे कल्याण करता मनुखता दे हामी दुखियां ते गरीबां नूं हिकड़ी नाल लाउण वाले संसार दी कल्याण करन वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सोरठ महला पहला विच कृपा करदे ने।

तू दाता है, तेरे कोल सारियां दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना तो मैं है भाई, मैं मंगा की हे मालिक मैनू ओ दात दे जड़ी सदा थिर रहे। करता तू मेरा जजुमान, एक दखना हो तै पै मांगू, देवो अपना नाम मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने, जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया, जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र

खट खट रव रहा बनवारी। कहंदे ने दुनिया दे मुसलमान काबे दी जियारत करन तुरे जा रहे सन, ओदां दे कपड़े पहने हुए। कबीर जी कहंदे ने मैं भी तुर पिया भई शायद परमात्मा रब उत्थे मिल जावे। कबीर हज

महाराज के दरबार विच तौस सरंदे ते रबाब वजा के इन रीतां दा कीर्तन सतगुरु की हजूरी च हुंदा रहा है। ये पुरातन रीत श्री हरिमंदर साहब की यह भेट है।

साहिबजादे सूबे दे सिपाहियां नाल ठंडे बुरज विच माता जी पास परत आए। माता गुजरी जी पोतियां कोलों इस तरह हाल पुछदे हैं।

व्यास जिन्होंने गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लै करके गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे जीवन च चात मारी, गहरे जा करके के गुरुआं दे जीवन कैसे सन, कैसियां कैसियां सेवावां गुरु महाराज ने कीतियां अपने जीवन विच, ते फिर बई संगतां नू प्रेरणा कीती कि ऐसियां सेवावां करन नाल वधेरे फल मिलदे हन। पाईसा पाई गुरुदास जी, गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह निमाणियां दे मान, नितानियां दे तान, नियोटियां दी ओट, नियासरियां दे आसरे उना दे जीवन विच चात मारी ते की देखिया के भाई गुरु अंगद देव जी महाराज दी सेवा कीती, उना नू रोज इशनान करवाया ते फिर एक दिन ऐसा आया जदों गुरु अंगद देव जी महाराज पासों अनेकां फल प्राप्त कीते। साडे देश दे विच गंगा नू पवित्र मनिया जांदा है, सनातन तो सनातन गंगा दी पूजा कीती जांदी है ते गुरु अमरदास जी अजे गुरु नहीं सन बने, बाबा अमरदास जी सन 72 साल दी उम्र तक अपने जीवन विच हर साल मंडली दे नाल हरिद्वार जाया करदे सन, ते हरिद्वार जा करके पाठ पूजा करनी, संतां दा संग करना ते फिर बई गंगा दा इशनान करना, ते गंगा दे इशनान करन दा फल प्राप्त करना। एक दिन ऐसा आया, इशनान कीता, जिथे आसन लगाया सी उथे नाल ही पंडित जी दा आसन सी। पंडित जी बड़े विद्वान, पंडित जी ने देखिया बाबा अमरदास जी दे पैरां दे विच पदम है, ए पदम भगवान कृष्ण महाराज दे पैर दे विच सी, ते पंडित जी ने कहा बाबा जी आप दे पैर दे विच ते पदम है, ते ए पदम आम मनुख दे पैर विच नहीं हुंदा, जिदे पैर विच होवे ओ या ते राजियां दा राजा बनदा है, सुल्तान बनदा है, या फिर संतां दा महान संत बनदा है जेड़ा सारियां नू परमात्मा नाल जोड़दा है। सुन के हैरान होए, लगन बड़ी सी परमात्मा दे चरना कमलां दा ध्यान तरन दे। समा होया खान दा ते पंडित जी ने पूछ लिया बाबा जी आप दे गुरु कौन हन, गुरु तारन नहीं सी कीता ते जदों इनकार कीता कि मेरा अजे गुरु कोई नहीं, ते पंडित जी ने कहा मैं अपना जन्म प्रिष्ट नहीं करना, मैं आप दे नाल प्रशादा नहीं छक सकता, आपने गुरु धारण नहीं कीता, कहंदे हन निगुरे दा नाम बुरा। कलेजे दे विच तीर लगा, उदास चित अपने घर वल नू पुजे, रात सारी नींद नहीं आई, ते अमृत वेला होया कि सुनदे हन के नाल दे करों भरा दे करों उना दी नू राणी जपजी साहिब दा पाठ कर रही है। ज्यों ज्यों पाठ सुनदे

मन टिका विच आ गया। नूरानी कोलों पुछया जा करके, बच्ची ए जो पाठ कर रही है ए किसदा उचारण कीता होया है? अगो जवाब मिलिया, पिता जी ए ते बाबा नानक जो कल युग दे अवतार आए संसार ते उना दी पवित्र बाणी है। उना ने कहा, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। मानो ज्ञान हुंदा गया। बच्ची दे प्रवचन सुने बाबा अमरदास जी चैन नाल कर नहीं बैठे। उसे वेले जा गुरु अंगद सच्चे पातशाह दे चरना ते मत्था टेकया। अगों गुरु अंगद देव जी महाराज ने प्यार कीता, सत्कार करन लगे ते बाबा अमरदास जी कहन लगे, गुरु महाराज मैं अज कुड़म बन के नहीं आया। मैं जानदा हां कि आप मेरे छोटे भरा दे सदके मेरा सत्कार करना चाहते हो, पर मैं ते अज दास बन के आया हां। अज ते मैं अपनी झोली खैर पवाण आया हां, मेरे ते कृपा करो मैनू अपना सेवक बना लवो। गुरु अंगद देव जी कहन लगे, आप ते मालक हो, घर दे मालक हो, आए हो ते गुरु नानक दे घर दी सेवा करनी शुरू कर दे। देखदे देखदे बाबा अमरदास जी सारा दिन संगत दी सेवा कर दे, लकड़ा टोन दे, लंगर दे विच प्रशादे पकांदे, संगतां नूं छकांदे ते फिर गुरु महाराज दी भी सेवा कर दे। रात पै जांदी ते सारे सेवक सौ जांदे ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ए गागर लैके ब्यास वल चल पैंदे। बाबा अमरदास जी एक दिन जदों ब्यास तों गागर चुक के पुठे पैरी आ रहे सन ते जुलाही दे ताने पेटे नाल पैर दा अंगूठा लग गया, डिग पे। आवाज आई अंदरों जुलाही ने किया के कौन हो सकदा है? जुलाही ने भी किया कौन हो सकदा है, ते जुलाही ने फिर कह दिता, होवेगा ओहो ही अमरू ने थावा। कहण दी देर सी इधरों अंतरयामी पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज नू अंतर ध्यान होए सन, जेड़े पता चल गया कि अज मेरा सेवक जिसनू ने थावा किया है, इतनी सेवा करन वाला, करड़ी सेवा करन वाला जिसनू ने थावा किया है उसनू ते निथाविया दे थाम होना चाहिदा है। बस भगती परवान होई, सेवा परवान होई ते ज्यों ही आ करके बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव जी नू इशनान कराया ते इशनान करके बिठाया तख्त ते वर देने शुरू कर दिते। भई बाबा अमरदास जी तुसी ते निमाणिया दे माण हो, निताणिया दे तान हो, न्योटिया दी ओट, निगत्या दी गत, पत्या दी पत। पाईसा पाई गुरुदास जी ने इस सेवा नू जदों परवान होया देखिया ते फिर बई कवित दे विच कलम बद कीता, इस कारण करके कि आन वाले संसार दे सेवकां नू पता चल जावे कि एक गुरसिख नू इशनान करन दा कितना क फल मिल सकदा है। मगर ओ गुरसिख होवे गुरु

करके अनाज लियांदा, लिया करके आप पकाया ते पका करके सारे साधुआं नू भोजन छकाया, पानी पिलाया ते उन्हां नू तृप्त कीता।

0: बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बतावन रहे गुरु बिन ज्ञान न हो। ओ गुरु बिन ज्ञान न हो।
1: पापा जी ताड़ी इस छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जांदा है।
2: आसरा उसका आधार दा मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उतर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोहे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मन में जल लग रहे हैं तुम्हारे को हजारों यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी की एक छपड़ी और कंडे ते बेरी का दरख्त ते बेरी ते कहां बैठते ने
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इको ही होगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे। कागू हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उठे गुरु अमरदास जी का दरबार है गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हाँ बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है। उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल लै जाणगे जिस मंजिल ही तुहाडे दिलां च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल।
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्थर है उथे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असि चलने
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज साज सुबह नवाज गुजार जो सिर साई नानिवे सो सिर कफल उतार। जो सिर साई नानिवे सो सिर की देताए उन्हें पैठ जलाए बालन संदे थाए बालन संदे थाए।
5: और साहब जी की गल है पहला तुसी ने कह दिता।
4: असी किस तरह जानते सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा।
5: की पूछना सी।
4: सारे मुसाफिरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट किया है पर असी सारे कोल ना दिल चौल ना धर्म ना तमड़ा।
5: और चलिए भैने मैं कोई कम कमाइया नहीं तो नहीं करता। मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगतां की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुहाडी लोड़ा।
5: मेरिया लोड़ा। मेरिया लोड़ा तो खुदावंद पूरिया करता है तो हो भी चाहिए देखिए जो कुछ मैं लोग दे जाते हैं जाके गुरु के दरबार चढ़ा देना। दिन वेले बेड़ी चलाना तो राति लंगर चो ढेड़ पड़ के बाहर थे दसो जाना। मैं उगन हारा को गुण पल्ले नहीं।
4: तन हो तुसी।
5: तन ते मैं नहीं पैना। तन तो गुरु महाराज है जरा सब नू अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलाता है। और दर ते जाओगे तो उन्हू कहना जिन्हें सानू यह सागर पार कराया उस अवगन हारे नू इस पाव सागर तो पार उतारो।